फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज बीफ बृहस्पतिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक सुंदर भजन होगा। और वो भी देवशीष दास गुप्ता जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

देखिए आवास में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आशा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अगला भजन जो प्रोग्राम

सुंदर भजन वस्त्रों का भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी थे। सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो एसपीएस की जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अबकी बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बेला जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

बेला जी की आवास में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर, शर्मा जी की आवाज।

रेडियो SBS के जरिए शर्मा जी की आवाज में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। अब की बार भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में विक्रम के आवाज में ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहना।

0: सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चले प्रोग्राम में गोपाल जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।
1: मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये तीन बातों शीघ्र उद्धार करने वाली है। पिता पुत्र प्रभु से कहते हैं,

अभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से हमारी तरफ से हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है सभी दुखित प्राणियों के लिए सभी बच्चों के लिए सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं काम करने वाले हैं सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का नाम, कमल खान, कुमार सानू, अलका, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज में। और गाना का बोल है ओ प्रिया ओ प्रिया, कहीं प्यार ना हो जाए।

जुबिन एन नीति मोहन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए 2-32-62-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग। प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में

फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और चले अब की बार कुमार सानू एनाल का जी की ओर। किसी से तुम प्यार करो कहीं

अंदाज फिल्म का नाम कुमार सानू एंड अलका की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl से वेबसाइट के जरिए भी अपना मोबाइल फोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चलिए एक बार फिर से कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश होगा एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना है।

कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 24 घंटे बारह एक बार होता है उस पर आप कार कीजिए और सभी इन्फॉर्मेशन लीजिए 03-25-65-65-60 पर या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। उदित नारायण और अनुराधा पोटवल फिल्म का नाम कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम।

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है, और आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। एक बार फिर से उदित नारायण।

में गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है, उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत नखमे प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले शान और संजीवानी की आवाज में ये गाना।

में ये गाना बस पेश की गई पुरानी फिल्म खानदान, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब ये बार द मैन विद अ गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में। ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है किनारे किनारे।

आसरो भी देखिए, गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार के बाद महेंद्र कपूर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में है। आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये खास गाना की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और

0: रेडियो SBS की जरिए पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दोस्ती का गीत पेश की गई। चले तलत महमूद और आशा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: जब दिल नादान का प्रीमियर पे मेरी मुलाकात उनसे हुई, मुलाकात वैसे होती रहती थी आगे पीछे, तो हमने ये शायद जरूर कहा हो कि तलत जी आप इतना अच्छा गाते हैं, क्यों नहीं आप अपना पूरा वक्त इसी टैलेंट में शायद लगाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा, कल हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और वही हुआ कि आगे चलकर जब मैंने अपनी पहली पिक्चरें 1952-53 में काम किया तो तलत महमूद साहब ने मेरे प्लेबैक दिया था लैला मजनू में, ठोकर में, और एक समझे कि दिल की तमन्ना।

रेडियो SBS के जरिए मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी है, पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। किशोर एंड लता मंगेशकर।

0: इसकर की आवाज में एक गाना उस प्रोग्राम में पेश किया गया, जब याद किसी की आती है फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में किशोर एन लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम महाचोर।
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: मैंने नहीं सुना, जरा जोर से कहो।

और इन लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। लता मंगेशकर एक बार फिर से आज के प्रोग्राम में, अब की बार हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्म महल की ओर। महल फिल्म का नाम 1949 का फिल्म।

महल का गीत पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की ओर। और अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम दो रास्ते, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030 262 66 11।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हमारा आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना मेहदी हसन और मेहनास प्रोग्राम में होगा। एक पाकिस्तानी मूवी का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम बहन भाई। फिल्म बहन भाई

की गई, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गए। आशा भोसले एन लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं 1962 का फिल्म का गीत की ओर। फिल्म का नाम प्रोफेसर

गाना जो पेश की गए आशा भोसले और खासतौर पर लता मंगेशकर की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम प्रोफेसर, उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश प्रोग्राम।

द माइटी मुकेश की आवाज में गाना बस पे इसकी गई फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम। रेडियो एसबीएस के जरिए ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चले गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। एक नॉन फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में रफी साहब की आवाज में पेश किया जा रहा है।

श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में स्वर्गीय हेमंत कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।

स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर की ओर हम आपको ले चलते हैं, जिंदगी और मौत फिल्म का नाम।

महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई जिंदगी और मौत फिल्म का नाम। सुन वालो रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03025656060। लता मंगेशकर

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना पेश होगा, फिल्म का नाम सबसे बड़ा रुपया। किशोर और लता जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना बस पीस की गई। फिल्म का नाम कर्स, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है। फिल्म कर्स का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में।

रेडियो SBS की श्री सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे अब की बार अनुराधा पोटवल और उदित नारायण की ओर।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। तुलसी कुमार एन राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

और कविता कृष्णमूर्ति के आवाज में ये गाना बस पेश की गए। चले शान और महालक्ष्मी आयर की ओर।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में गाना बस पेश की गई शादी का लड्डू फिल्म का नाम रेडियो SBS की जरिए गाना भी आपने सुना।

रेडियो SBS की जरिए सुनिधि चौहान की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है खूबसूरत सा गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज में सुनकर और बेहद पसंद किया है। के और शिल्पा राव की आवाज में चले मिलकर ये गाना सुनते हैं। ऐ दो फिल्म बचना ऐ हसीनो।

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई के और शिल्पा राव की आवाज में गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो

चले प्रोग्राम में अबकी बार जुबिन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो वेव्स पे इसकी जरिए ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई विशाल मिटून और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो एसबीएस की जरिए ये खास गाना जो पेश हुआ है एक तो फिल्म खुदा हाफिज फिल्म सड़क नंबर 2 अंकित तिवारी और लीना भोज की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में अबकी बार

रीना भोज की आवाज में ये गाना पेश किया गया सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम, फिल्म जो 2020 में रिलीज किया गया है। सुन वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 0325 65 65 60 पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। नया फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है।

विशाल शेखर के शान और तुलसी कुमार की आवाज में गाना पेश की गए बागी नंबर 3 से। अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना का बोल है

रेडियो SBS की सरिया खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी अरमान मलिक की आवाज में गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार उदित नारायण और साधना

बाजी का गीत पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl और उसके साथ आपको खबर किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656566। जुबिन और नीति मोहन प्रोग्राम में।

0: सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। चले आपके बार
1: हेलो हेलो,
0: ये गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। भूमि फिल्म का नाम है।
1: तारीफों के पुल बांध रहे हैं होने वाले मियां के, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है खुले सांड खड़े हैं, ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं, दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं।

एम जूनिता गांधी की आवाज में ये गाना पेश की गई अर्ध फिल्म भूमि का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन लाइव शहरी तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अभी बार फिल्म बागी, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

चलिए फिल्म बार बार देखो, अरबान मलिक और नीति मोहन प्रोग्राम में। सौ आसमान गाना का बोल है आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में जुबिन एंड पलक के आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है इश्क फॉरएवर फिल्म का नाम।

पलक की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आतिफ असलम की आवाज में जो अब की बार पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम

उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनवालों की सेवा में। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। द हार्ट ऑफ द बिलियंस माइटी मुकेश।

प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले मुकेश के बाद किशोर कुमार द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है ये जो मोहब्बत है किशोर कुमार द नेम ऑफ द मूवी कटी पतंग 1970 का फिल्म 1987 का फिल्म है फिल्म कटी पतंग एक्टिंग सॉन्ग बाय लेट

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, ये जो मोहब्बत है, रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

कि इसकी आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। गाना मोहम्मद रफी और हेमलता की आवाज में पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और हेमलता की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए दिल करने लगा है प्यार तुम्हें। खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मन्ना डे प्रोग्राम में होगा और मन्ना डे की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आपकी बार पेश होगा मोहम्मद रफी, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। आज की इस प्रोग्राम में ये गाना बस जरूर आप सुनते ही रहना।
1: मुझे तुमसे

परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये आज के ये प्रोग्राम में बस पेश की गई है। किशोर कुमार

कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में असरों भी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। एक गाना फिर से आशा भोसले एंड किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: दिल मचल रहा है,
1: अभी समा नहीं है।
2: आशा भोसले और किशोर कुमार के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। लता मंगेशकर प्रोग्राम में।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे खास तौर पर मुकेश जी की ओर और मुकेश की आवाज में दमाइटी मुकेश की आवाज में ये गाना भी इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम कन्हैया। मुकेश की आवाज में दमाइटी मुकेश की आवाज में ये गाना भी इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम कन्हैया।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था कन्हैया। चले किशोर कुमार की आवाज में, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए है। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0305656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं इश्क संग और अलका याचिक। दिस प्रachtig liedje kwam uit de film Dhadkan। Het volgende liedje in het programma Gieton Kelleher via Radio SBS is uit de film Chaudha Phere। हम दोनों यूं मिले।

0: मोहब्बत होना जाए इस गजोंग दौर अलका याचनिक एंड कुमार सानू एन गजोंग दौर अमित कुमार कम तो फोहत लीजिए इन एट प्रोग्राम गीतों के लहर आउट द फिल्म राजू चाचा दिल
1: प्लीज मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक चांस दो। हम दोनों के पास गुजरा हुआ कल नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मौका ना दो और हमारा आने वाला कल भी हमसे छिन जाए।
2: तुमने जो कुछ भी किया शेखर, उसके बाद खुद पे से भरोसा उठ गया। समझ में नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ। प्लीज शेखर, लेट मी गो।

सैलरू सैलरे, क्या बोला फिर बोला रे, इसे फिल्म शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय साहब में चंद्रचूर सिंह. De film Ghatkom Dag gezongen door Udit Narayan, Elke Yachnik, Sonu Nigam en Jasminder Narula. Jhumka Chandida, Chandida, Jhumka Chandida.

गुरनालो इश्क मिठा इस आर द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एन गजोंग दोर लता मंगेशकर कॉम्ट आर द फिल्म आरजू अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खजौंदर आरडी बर्मन लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार वासुदेव लीचे फिया रेडियो SBS इन इत प्रोग्रामा गीतों के लहर। एन अर्ध फिल्म बागी 3 कम्स खजौंदर शान एंड रोचाक तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस अर्ध फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड अर्ध फिल्म लव मैरिज कम्स हो जाऊंगा तो गीता दत्त करीब आओ ना।

वो बारिश की बूंदें इज आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, अ फिल्म फन श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर. एंड आउट द फिल्म प्यार तो होना ही था कॉम्ड गुसंग दौर आशा भोसले एंड विनोद राठौर. प्यार तो होना ही था द टाइटल सॉन्ग.

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वॉस आर द फिल्म अजनबी एंड आर द फिल्म 14 फेरे कंठ सहों दो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे। राधा कैसे न जेले बस अर्ध फिल्म लगान। एन अर्ध फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्ट गजोंग दूर सोनू निगम एंड अलका याचनिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इस सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एक वाम आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस uit de film फना एंड uit de film रूही आफ्सा इस het volgend liedje via Radio SBS किस्तों।

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

हेलो, मैं हरी पिया हूँ ही तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।